ओली जित से भी ऐसो पाई ऐसो साफ सरा संभालिए ये किता पे अपना सघाल पूरी क्यों कालिए मंदा मुल्ला की जी दिल मिर्दर निहालिए।

के पूपन के पूप हो के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दाव मानी महामान हो विद्या के विचार हो कि अद्वै अवतार हो

हरिय पाल हरिय छेद हरिय भेद हरिय जंत्र हरिय मंत्र हरि सो तेज हरिय तंत्र हरि अजात हरिय पात हरिय मित्र हरिय मात हरिय रोग हरिय शोक हरिय भरम हरिय करम हरि अजय हरिय भय हरिय भेद हरिय छेद।

त्वा प्रसाद कबित हुकमल हरि गज गदहा विभूत दारि गिद्वा मसान बास करे हुई करत है हुकवट मासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदीव मोन साधी मरत है बिंद के सधैयता ही जिकी बढ़ैया देत बंदर सदीव पाए नांगे फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कह सके तरत है भूत बन चार छित छौना सब दूता धारी पौन के आहारी शोभ जंग जानियत है तृण के बछैया धन लोभ के तजैया दे तो गौवन के जैया प्रिक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बडैया देत बगुला बिडाल प्रिक ध्यानी ठानियत है जिते बड ज्ञानी तिन्नो जानी पबखानी नाहे ऐसना प्रपंच मन भूला नियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के भजैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदि सफिरैया तत भूत कह पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के बछैया सो जगोर सम मानिए सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए नारायण कछ मछ दिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब दिन चारि ऋखि केस नाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अटेरु को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूड रूढ़ पीटत न गूढ़ता को भेद भावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है जो कि जट्टाधारी सती सच बड्डे ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह

काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज रीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअप चढ़त कित दुह को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हरे चुआचार भोज हारे पाहन चढ़ाए हरे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हारे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हरे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी त्व प्रसाद भुजंग।

परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमोवाद भंगे नमोवाद भंगे कितय कृष्ण से कीट कोटे उपाय।

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सातकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो।

कहूं कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं छुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध शिखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्धावस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं।

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वै नाश अंतुट तेज अनखुट भंडार ताता तुरंत सर्वं प्रकार अनभूत तेज अंशिजगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं।

जहे त्रास वास नहीं देह नास जहे आद अंत नहीं रूप रास जहे रोग शोक नहीं जोग जुगत जहे त्रास आस नहीं भूम भुगत जह काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जह नेत नेत उचरंत वेद जह अलख रूप कथत कतेव जह अलख रूप आसन अडोल जह अमित तेज अक्षय अतोल जह ध्यान काज मुंजन अनंत कई गलप जोग साधत दुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई गलप एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावतन पार कई उर्ध बाह देशन ब्रह्मांत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई गोग काव कथत कतेव कई अगन होत्र कई पौन हार कई गर्त कोड मृत को आहार कई गर्त साक पै पत्र भच्छ नहीं तदव देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नैकतास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सोभरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदपतास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उचरत सुकरम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ वितर करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदब दास पायत न अंत कई गर्त कूट विद्या विचार नहीं तदब दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन भोकटो सर्व धर्मा विहीन त्व प्रसाद तोटक छंद जय जम पह जुगण जूह जुवंग भय कम पह मेर पयाल भुवंग तप तापस सर्व जलेर धलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग

जेह राग न रूप न रेख रुखं जेह ताप न साप न शोक सुखं जेह रोग न शोक न भोग भुयं जेह खेद न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात पितं जेह रचयं क्षत्रि छत्र छितं जेह राग न रेख न रोग भणं जेह द्वैख न दाग न दोख गणं जेह अंड ते ब्रह्मंड रचियो जस चार करे नवखंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधुरो बिंद नगेंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नर पान रिपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेत जूत भुजंग किये देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतं प्रभ जात न पात न ज्योत चुतं जेह तात न मात न भ्रात सुतं जेह रोग न शोक न भोग भुवं जेह जंपह किन्नर जच जुवं नर नारन पुंसक जाह किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांद गणं भवभूत भवेख भवान तुवं जेह अंडज सेतज जेर रजं रज भूमा काश पताल जलं रज पावक पवन प्रचंड बली मन जास कियो फल फूल कली भुव मेर आकाश निवासितं रज रोज एकादश चंद्र प्रतंग दुध चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूत भूत छूत पतंगन गाद ब्याद नाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगं जय शोक न भोग न जोग जुगं भुव भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूप अटंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद गतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लहै जेह वेद पुराण कतेव जपै सुत सिंध दो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करै नहि नैक कृपा निध पान परै जय फोकट धरम सभै तजह एक चित्त कृपा निध को जपह त्यू या भव सागर को तरह भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम बे

है समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए न राग रंग रूप है न रोग राग रेग है अधोग ताग दग है अभूत ब्रह्म भेग है न तात मात जात है न पाद चयन वर्ण है अदेग सेग भेग है सदीव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठोर में विशेष

रंग है, न मान है, न मौत है, न साख है, न संग है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साहु है, न साह को कुमार है, न नेह है, न गेह है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है, न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है।

काल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाद है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न जल है, न छिद्र है, न

पाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत वेग है, बली अरूप राग रंग है, न द्वैग है, न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम बेज है, सदा छिज

तथापि करंत सेव है सदा से दसपति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपी भी सेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ वेखिय अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानिए सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत बांध सोध है।

जात पातना तात जाको मंत्र मातना मित्र सर्व ठौर बिखेर रम्यो जे चक्र चिन्ह न चित्र आदि देव उदार मूर्ता गात नात अनंत आदि अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सनक औसन केस नंदन पाव ही न हसेब जच किन्नर मछ

चक्र चिह्न न वर्ण जाको जात पात न भेख रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी याद देवा पाल दीन बंध प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार वरण चिहन न चक्र जाको चक्र चिहन कार जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न वरण सर्व दाता सर्व

धर्म के अनकर्म जेत कीन तौन पसार, देव देव गंधर्व किन्नर माछ कछ अपार, भूमा का जले धले महिमानिये जह नाम, दुष्ट हरता पुष्ट करता

दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के व्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भोगता सर्व जोगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन।

सत दुआबरत त्यागल जुग चतर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महा मुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यासक मोन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पार।

सब जगदीश को कहो सकल विद तैं दोहरा। को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्टि को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण।

असुर मर्दन रम्मक बर्दन दैत जिणन चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगन तुजा फरंकन फणी फुंकारण जोत जिते सरधार विवर खंड दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन भूमा कासल उर्द अथे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नराचन धरम वृते श्रोणंत अचिंती अनल बिवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय होसी मैं खासुर मर्दन पाप

अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मा खा सुर मर्दन भूमा का सपताल जलंग चाचर चमकारन चिच्छुर हारण धूम धूम कारण द्रप मथे दाढ़ विव्रतंते जोग जयंते मरुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य।

श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुध सन्ना हे अगमथा हे एक वृते जय जय होशी मखासुर मर्दन आदि कुमार गाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद तथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय होशी सब ठार निवासन पाए पताला का सन ले संकटे निवारण धम उदाहरण तेज प्रकर खण तुंद तबे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आधा नाद अगाधे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी शास्त्र प्रकर खण आध नीरा गाध भे चंचला जथंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा

चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर प्रत्यय धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल बाजयंती शत्रु मदंती दुष्ट प्रताहन गाढ़ मते जय जय होशी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अगाद गते खत्रियाण हतंगी अभय भंगी आदरंगी अगाद गते वृड़लाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद प्रते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय होशी मैं खासुर मर्दन विश्व विदुन संसिष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तर नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रदर्खण पितल तले अष्टायद बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय होशी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवक्षण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय होशी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करी ली गर्भ गही ली ज्योत जतीली धुंध मते अष्टायद चमकण शस्त्र

निधान कामल कृपाल दुख दोग हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जह जात पात नहीं भेद भरम जह रंग रूप नहीं एक।

लोग उनके करता हरता जल में थल में भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह संबोधन देह विरक्त गेह अच्छ है। जान को दे दे अजान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी सत सुंदर श्री पदमा पतल है। रोगंते हर सोगंते जल जोगंते बो भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत खावत तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर पाप संभोहन भेटन पावे और की बात कहा कह तो सौ सो पेट ही के बट बीज बचावे। जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा काश पताल रसादर जच भुजंग सभ सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो वेद कतेव न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पाण सब पचहारे भेद न पाए सके उन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आदान आदा गाद वेग जप।

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमाल देव गोर कर दे जी गुण गाव तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे आरव के आरव आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है मरठम गेले तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ व तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रूह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुण गावे जिन मचीन के शीस ने अवे तिब्बत दे आए दुख देह के दलत है जिन्हें तो धायो तिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल से फलत है देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेस कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दी।

पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए धृग जीवास जिन हरजन सतगुर संगत पाई तिन धर्म मस्तक लख्या लखास धन धन सत संगत जित

बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा होए बैठा कहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आजुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे अस ध्वजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जावन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छा छै सकै न कोई एक बार

लेहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अजदुज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तदकाला, मन बांशद फल पावे सोई, दोख नात सह व्यापत

कह चौपई सम सत्र सैस भणी जय अर्ध सैस भुन तीन कह जय भादौ सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

हर नाले, हर नाल रहो तो मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा कार्ज सब सवारना, सब ना गलां समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरे, घर ता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, कर शान सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तत घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत तो दवस कीते काल कंटक मारिया, धुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन